दुख जाए ताना वाहिगुरु जी सूही महला पंजवा गुरु अपने ऊपर बल जाइया आठ पहर हर हर जस गाइया

जन्म जन्म के किलबिख जाही कर कृपा प्रभु दीना दयाला नानक मांगे संतर वाला कर कृपा प्रभु दीन दयाला नानक मांगे संतर वाला वाहिगुरु।

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदासी हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नू समराओ श्री हर आए। श्री हर कृष्ण ते आइया जिस डिठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौन दयावै ताई सब थाई होई सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होई सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी वाहेगुरु। हे निमाणिया दे मान नीताणिया दे तान नी ओटिया दी ओट। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप जी दे हजूर अरदास बेनती है। आप जी दा कोटान कोट शुकर है जिन्हां ने अमृत वेले तो लैके खुले दर्शन दारे दे के संगतां नू निहाल कीता। दीवाना दी समाप्ति तो बाद आप जी दे पवित्र स्वरूप दी सेवा करदिआं सोला साहिब बाणी दे पाठ करदिआं बेअंत फुल्लां बख्श देना। हुण कृपा करो अपने निज स्थानां ते विराजमान हो के संगतां नू खुशियां बख्शो। अमृत वेले दा जागना बख्शना अमृत वेले खुले दर्शन दीदारे दे के निहाल करना जी। सुख होवे नाम चिते आवै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणी सरबत दा भला। वाहिगुरु।

0: गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात, नानक चाओ एहो, नानक चाओ एहो, वाहिगुरु वाहे गुरु, वाहिगुरु वाहे गुरु, वाहिगुरु वाहे गुरु, वाहिगुरु वाहे गुरु, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, जो लरे दीन के हेत, जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरा, पुरजा पुरजा कट मरा, कबहू ना छाड़े खेत, कबहू ना छाड़े खेत, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए,
1: जो बोले सोने हाल हो जावे तन तन श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने मनु पावे
2: बोले के जो कारण निहाल हो जावे तन तन सिद्धि ग्रंथ है जैसे भानु पावे
0: देखते पांत की राज करेगा चूल ते निशान रहे लाग ते दीवान है
2: भले
0: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

बेटा को भैया को छोड़ियो के चैया छोड़ का सो रीत लाई है साधन से धैया तुल धानी के तुझैया तुम तार को तरैया ज्ञान का को सदा लाई है आओ के बढ़िया एक

चित मद पार छंद त्वे प्रसाद गुण गन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास आजान बाहु साहान साहु राजान राजपानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनुभूत अंग आबा अपंग गत मित अपार गुण गन उदार मुन गन प्रणाम निरपह निकाम आत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ्य अंडन बाढ्य चाचरी छंद त्वे प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारी अपारी हरियंग करियंग निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र धान्य चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाली चतर चक्र काली चतर चक्र पासी चतर चक्र वासी चतर चक्र माने चतर चक्र धान्य चाचरी छंद न सतरे न मित्र न परमंग न पितरे न कर्मंग न काय जन्मंग जाई न चित्रे न मित्र परे है पवित्र प्रथिसे अधिसे अदृश अकृसे भगवती छंद त्वे प्रसाद कथती किया सिजदीसै किया पिज पीसै किया गंज करमै किया पंज परमै किया पिज लोकै किया दित सुकै के विधूत वरनै के विभूत करनै के राजंग प्रवाह है कि धर्मंग तुझा है किया शोक वरनै कि सर्वा अपर्णै कि जगतंग कृति है कि शत्रंग क्षत्री है के ब्रह्मंग स्वरूप है कि अनुपव अनूप है कि आदि अदीव है कि आप अपीव है कि चित्रंग विहीन है कि एक अधीन है कि रुजी रजा कै रहीम है रिहा कै के पाक बेअब है कि गैबुल गैब है कि अफूल गुना है कि साहान साह है कि कारण कुनिंद है कि रुजी देहांद है कि राज के रहीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौन है कि सर्वत्र पहुन है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पीस है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र दिस है कि सर्वत्र पीस है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काज है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र भूख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र दिस है कि सर्वत्र पीस है कि सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है कि सर्वत्र जाप्य है कि सर्वत्र थाप्य है कि सर्वत्र पान है कि सर्वत्र मन है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वंग कलीम है कि परमंग फहीम है कि आकल अलाम है कि साहिब कलाम है कि हुसनल वजू है तमामुल रुजू है हमीसुल सलाम है सलीखत मुदाम है गनीमुल सिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलुंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजूअल निदान है हरीफुल अजीम है रजायक यकीन है अनेकुल तरंग है अभेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनी मुलखिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रपुक्त प्रवाह है सुजुगत सुधा है सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त उल सलाम है सदैव अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओअंगाध रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रकामे त्रिवर्गंग त्रिभादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्व भागे सुसर्वा अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप है अछिज है अशूत है किन्नरकंग प्रणास है पृथ्वील प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी छंद भंग है अनंग है अपीख है अलीख है अपरम है अकर्म है अनाद है जुगाद है जय है अभय है अपूत है अतूत है अनास है उदास है तंद है अबंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है अनचिंत है सुनंत है अलिख है अधिक है अलेख है अपीख है अटाह है अगाह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंद त्वे प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्वे प्रसाद नमो नरकनास्य सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात
ਨਿਰਸਾਕੰ ਸ੍ਰੀ

है मितु अमीक है सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंद त्वे प्रसाद के जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है हमेशा सलाम है समस्तल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसनल चराग है कि कामल करीम है कि राज करहीम है कि रोजी दिहंद है कि राज कर हिंद है करीमुल कमाल है कि हुसनल जमाल है गनीमल खिराज है गरीबल निवाज है हरीफल सिकन है हरासल फिकन है कलंकंग प्रणास है समस्तल निवास है अकंजल गनीम है रजाय करहीम है समस्तल जवा है कि साहिब किरा है कि नरकंग प्रणास है बहस्तल निवास है कि सर्वल गवन है हमेशल रवन है तमामुल तमीज है समस्तल अजीज है परंग परम ईस है समस्तल अदीस है अदेशल अलेख है हमेशल अपेख है जमीनल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि अमितो सुबास है कि अजब स्वरूप है कि अमितो विभूत है कि अमितो पसा है कि आत्म प्रवाह है कि अचलंग अनंग है कि अमितो अपहंग है मद पार छंद त्वे प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गन मुदाम अरबर अगंज हर नर परपंज अन गन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गन प्रणाम जल थल मुदाम अनछिज अंग आसन अपंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास तित तर तुरास आजान बाहु एकै सदाहु ओंकार याद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात अज जना बात अनझंज गात अनरंज बात अन टुट भंडार अनठ अपार अढ़ीठ धर्म अदीठ कर्म अनब्रण अनंत

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पातशाही दसवीं त्वे प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिर कर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रत्ती बिन एक रत्ती के मतिम तंग जरे जर संग अनुपो तंग सुरंग सवारी कूड़ तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के भूप भली बिद न्यावत सीस न जात विचारे इते भय तो कहा भय भूपत अंत को नंगे ही पाए पधारे जीत फिर सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारी गुंजत गुड़ जान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गन नहीं जात विचारे श्रीपत श्री भगवान भजी बिन अंत कौ अंत के धाम सुधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेमन एक सिख वेद पुराण कतिव कुरान जमीन जमान सबान के पिख पौन आहार जति जत तहार सवै सुब चार हजार के दिख श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख सुध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सनाह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर रीन मरोर मवासन मा तिम तंगन मान मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर पार बड़े बरियार अविचार है सार की तार पिछैया तोरत देश मिलिंद मवासन मा तिग जान की मान मलैया गाड़ गडान की तोड़न हार सुबातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक देवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाड जैत तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सवै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजिंद्र नराधप जौंतर लोक को राज करेंगे कूट स्नान गजाधिक दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर सन सची पात अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के प्रस है भगते नर फेर न देह तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो नहात फिर लिये सात समुन्द्र न लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज तरियो सिर काहू ले लंग घरे लटकायो काहू लखियो हर अवाची दिशा में है काहू पशाह को शीस निवायो को बुतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो कूर के

0: प्रसाद तर ऊपर सुख बस है
1: सुत प्रात बीत बंता संग है
0: जिह प्रसाद पीव है शीतल जल
1: सुखदाई पवन पाव कमला
0: जिह प्रसाद भोग है सब रस
1: सगले सामग्री संग साथ बसा
0: जिन्हें हस्त पाव कर्ण नित रसना
1: इसे त्याग अवर संग रचना
0: ऐसे दुख

0: जिह प्रसाद तेरे सगल छिद्र टाकी
1: मानसानी पठाकर प्राप्ता
0: जिह प्रसाद तुझको ना पहुँचे
1: मानसा सा सिमरो प्रभु
0: जिह प्रसाद पाई दुर्लभ दी
1: नानक ताकि भगत करे
0: जिह प्रसाद भूखन पहरी
1: मानते सिमरत को आलस की
0: जिह प्रसाद अशुभ हस्त सवारी
1: मानते प्रभु को कबू नाम सारी
0: जिह प्रसाद बाग मिलख तना
1: राग प्रभु प्रभु अपने मना
0: जिह तेरी मन बनत बनाई
1: उठे वैसा तिसे इत्यादि।

0: प्रसाद बोल है अमृत रसना
1: जे प्रसाद सुख सहजे वसना
0: जे प्रसाद हस्त कर चल है
1: जे प्रसाद सुपूरन फल
0: जे प्रसाद परम गत पाव है
1: जे प्रसाद सुख सहज समाव
0: ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागू
1: गुरु प्रसाद नानक मन जागो
0: जे प्रसाद तुम

0: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदा के
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
0: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने
1: ब्रह्म ज्ञानी के गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता।

0: संग पावे चन को
1: कर कृपा अंतर और तहार
0: पास प्रेत मुदर पाथर को तारे
1: सर्व रूप का उखद नाम
0: कल्याण रूप मंगल गणगा
1: कहू जुगत कित न पाइय धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: तिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम तिस नदरी आया
0: दास रांतन पाए तन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास दर गए परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: इस दास को सब सो जी पर
1: संग आत्म

0: प्रसाद जाका मिटे अभिमान।
1: सो जन नानक दर के परवान,
0: कूट कर्म करे हो तहारी,
1: श्रम पावे सगले व्यर्थारे,
0: अनेक तपस्या करे अहंकार,
1: नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार,
0: अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवे,
1: हजार वेको कैसे गवे,
0: आप उसको जो भला कहावे,
1: किसे भलाई निकट न आवे,
0: सर्व की रीन जा का मन हुई,
1: कौन नरक ताके निर्मल सोए,
0: जब लग जाने मुझ ती कश हुई,
1: तब इसको सुख नाही कोई,
0: जब जाने मैं किस करता,
1: तबला गर्भ जोन में
0: फेता, है कुबेरी मीत,
1: तबला नेचल नाही चीन,
0: जब लग मुह मगन संग माई,
1: तब लग धर्म राय देश जाए,
0: तब कृपा ते बंधन टूटे,
1: दुर्वसा नानक हो छूटे,
0: सहस कटे लख को उठता हवे,
1: कीर्तन आवे माया पाछे बावे,
0: अनेक भोग भिख्या के करे,
1: देव तब तावे खप खप मरे,
0: बिना संतोष नहीं को राजे,
1: सुपना मनोरथ बिरथे सब काजे,
0: राम रंग सर्व सुख हुई,
1: बड़ भागी।

0: मानव की टेक पृथ्वी सब जान
1: देवन को एक भगवान
0: क्या दिया रह अगाही
1: तृष्णा लागे आए
0: हर रखे एक
1: माने के कृष्णा ही हाथ
0: उसका हुकुम बूझ सुख होए
1: इसका नाम राम कांड परोए
0: सिमर सिमर सिमर प्रभु सुई
1: नानक बिघन न लागे कोई
0: उस्तत मन में कर निरंकार
1: कर मन मेरे सद व्यवहार।

0: समीत विसार
1: जानक अमृत में अर्थारू
0: करण कारण सो प्रभु समर्थ
1: निर्कर कहो नाम हर वक्त
0: यह तन संच हो भगवान
1: सांजना का निर्मन मंत्र
0: एकास रखो मन माही
1: सर्व रोग नानक मिट जाए
0: तन को चार कुंट उठता वह।

0: आसन कर देव
1: आत्म जन्म का हुए उधार
0: सिमरन प्राण आधार
1: को पावना छूटन हारी
0: सिमर शास्त्र वेद विचार
1: हर की भगत करो मन लाई
0: मन वंशन नानक फल पाए
1: संग न चालस तीर तन
0: क्या लपटावे मूर्ख मना
1: सुत मीत कुटुंब अर बनता
0: इनते कहो तो कवन सनाता
1: राज रंग माया विस्तार
0: इनते कहो कवन छिटकार
1: हसी रथ सवारी
0: झूठा डंप झूठ पसारी
1: जिन दियत सुबुझे न बिगाना
0: नाम सार नानक पछताना
1: गुरु की मत तू ले
0: भक्त बिना बड बेस्याने
1: भक्त करो मन मीत
0: निर्मल होए तवार
1: चरण कमल राखो मन वाहि
0: जन्म जन्म के किल विख जाए
1: आप जपहु अवरा नाम जपाव
0: संत कहत रहत गदवा
1: सार भूत सत हर को नाव
0: सहस पाए नानक गुण गाव
1: गावत तेरी उतरस मैलू।

0: दीन दयाल
1: भक्त वसल सदा करपाल
0: नाथ नाथ गोविंद गोपाल
1: सर्व कटा कर्त प्रतपाल
0: आदि पुरुष कारण करता
1: भक्त जना के प्राण धार
0: पैस होए पुनीत
1: भक्त पाए लावे मनहित
0: हम निर्गुण यार नीच अजान
1: नानक तुम्हें सर्व पुरुष भगवान
0: कुंठ मुक्त मोख पाए।

0: नारक स्वर्ग विषावद
1: जाल जाल माया जंजाल
0: मे मोह परम पैपार
1: दुख सुख मान अपमान
0: नानक अपकार कियो बखिया
1: अपन खेल आप कर देखे
0: खेल सोचे तो नानक के
1: जय भगत भक्त तह आप
0: जय पसरे पर संत संत
1: प्रताप
0: उनकी शोभा।

0: अंतर्वाहर पूर्ण पूर रहे दयालु
1: सब परोवत कृपा
0: अपने कर्तव्य जाने आप
1: अंतर जामी रहो
0: व्यापल जीवन बह पात
1: जो जो रचे सो तिसे
0: भगत सलहे मिलाई
1: भक्त करे हर के गुणगान
0: अंतर विश्वास कर मने
1: कारण हार नानक एक जाने
0: गमला गहर एक नाई
1: इसकी आसना वृद्धि जाए
0: सेवक को सेवा बन आई
1: मुकाम बोझ परम बदवाई
0: इसके ऊपर नहीं विचार
1: जाके मन बसे अहंकार
0: बंधन तोर पहे निर्वैर
1: अंदर पूजे गुर के
0: पैर लोक सुखी पर लोक सुहेले
1: नानक हर प्रभु आपे मेरे
0: साथ संगमल करहो आनंद
1: गुण गावो प्रपरमानंद
0: राम नाम तत करहो विचार
1: दुर्लभ देता करो दा।

0: आलम जान के खेल बनाया
1: आज्ञाकारी किन्नी माया
0: सबके मद अलिप्त रहे
1: जो कुछ कहना सो आपे करे
0: आज्ञा आवे आज्ञा जाए
1: नानक जा पावे तले समाए
0: उसके होए सो नाही बुरा
1: लेकिन ओ किने कष्ट करा
0: आप ला कर तू दत्त नीकी
1: आपे

0: काम
1: जिस मन बसे सो होदन दान
0: इच्छा ताकि पूर्ण होए
1: प्रदान पुरख प्रगट सब लोए
0: ऊच पाए स्थान
1: और ना होवे आवंजन
0: खाट चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: शांत निद नव निद
1: बुद्ध ज्ञान सर ते सिद्ध
0: तब जोग प्रवत्यान
1: ज्ञान श्रेर हो दम

सत्हि परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु संगत जीओ वड्या भागा वाले हो गरीब निवाज सच्चे पातशाह साहिब आलम सरवरे कायनात धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिया दे पावन पवित्र सचखंड दरबार दिया हाजरियां भर के गुरबाणी पढ़ सुन के लाहे प्राप्त कर रहे हो धनवादी हाँ सत्कारयोग ज्ञानी जी दे आप जी नूं लड़ीवार पावन गुरबाणी की कथा विचार नाल शिरशार कर रहे सन। आओ अगले समय वास्ते बेनती करा सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दे हजूरी रागी भाई साहब भाई कमलजीत सिंह जी रबाबी आप जी नूं आने वाले समय वास्ते गुरबाणी कीर्तन राही निहाल करनगे होइयां सरबत भुल्लां दी कृपा करके खिमा बख्शणी धन सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह बंदी छोड़ सतगुरु मीरी पीरी दे मालक जी दा अज पावन गुरता गद्दी दिहाड़ा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे गुरता गद्दी दिहाड़े दियां आप समूह संगतां नूं बेअंत बेअंत मुबारकां सच्चे पातशाह कृपा करन साढ़े सभनां दे सिर ते मेहरां भरिया हथ रख के चरना कमलां दी प्यारी गुरसिखी दी दात बख्शिश करन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

चरण कमल रज मस्तक लेपन कै परम करम लेख श्यामता मिटाई है। चरण कमल चरणामृत मलीन मन कर निर्मल दूत दुबदा मिटाई है। चरण कमल सुख संपट सहज कर निहचल मत एक टेक ठहराई है।

बहु सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निहचल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करह सोहोई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैडा साई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा।

डूबी अले मन एक न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जती सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत न

चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावहो, आप हाथ दे मोहे बचावहो। सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सब है करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संगरिए।

सारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तो जुजू करिय हो रच्छा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो।

श्री असमान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तोहे बखाने दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गहे।

जैस धूप देव हो तो दूध को जाव हो। दूध कर्म फोन सुरत समायण होए निराश जमाव हो। जप